अवगुण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जाता औगुण आरा मनुख पशु गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा औगुणा दे वस पै के बंदा थले गिर जाता अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने दी हस्ती नूं कटदे ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे ने

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चों नाल गलबात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चों पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच दोस्तां विच घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ ऊंट आई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चों पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नु कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदो गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नू नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिड़े आख दे सन

तू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ड़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही ओनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी ओनू छड़ देवांगे। केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साला

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा सतगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत हसन।

बैठे दो घड़ियां वास्ते, पर भाई साहब लिखते ने आए संत ब्राह्मणे कीर्तन होआ रहन सबाई।

अपना काम भूल गए। जे राजे दी मालिश कर ए ना गया राजा इनू सजा देवेगा। ता परमेश्वर ने आप सहन ना

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत सब सानू दसते ने किते जातरक नू वेख ले पपीए नू वेख ले जेड़ा स्वाति बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदे सब बाणी विच कहिंदे ने

कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिन्हां नाम जपया सिमरन कीता भावें कोई वड्डा है भावें कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू, नाम जपण वालियां नू, सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण भरी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साई है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठ दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हन पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नूं छड़ गए। सोने दियां मोरां चुक के घरां नूं चले गए। साहब जी फिर खोला जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच पार के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नूं खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी।
साहब जी ने भाई लहने नु कोल सदया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लहने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।

छेवें पातशाह गुरु हर गोबिंद जी दे समय बीबी सुलखणी होई है। बहुतियां थावां ते विचारी गई लेकिन कितों पुत्र दी दात ना मिली। शिवालयां ते भी गई, जोगियां दे मठां विच भी गई, कबरां नूं भी जाके पूजिया, मणि मसाणां विच भी गई लेकिन कितों खरैत ना पई। ताईं किसे ने सुलखणी नूं सरोत पाई, सुलखणीए जे पुत्र चाहुंदी है तां गुरु नानक दे दर ते जा। इस वेले गुरु नानक दी छेवीं जोत मीरी पीरी दा मालक गुरु हर गोबिंद अकाल तख्त ते सुशोभित है। तू उना दे चरणां विच जा के बेनती कर ते जो गुरु नानक दे दर ते जा के अरदास करद मंग मंगद ओ कदे फिर खाली नहीं लौटदा। सत संगत बोलो श्री। बीबी सुलखणी जदों मीरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी दे चरणों विच गई जा बेनती कीती, सच्चे पातशाह तेरे चरणों विच अरदास है, मैं सारे द्वारे द्वारे डोल आई हां, कितों खरैत नहीं मिली, इक हुण तेरा दर रह गया और तेरे दर दी मैं स्रोत सुनी है, जो तेरे दर ते आउंदा ओ कदे खाली नहीं मुड़दा, मेरी भी चोली विच इक पुत्र दी दात पा दे, इक पुत्र बख्शो। मेरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी ने नेत्र बंद कीते और जदों अखां खोलियां ते आख्या आ सुलखणीए तेरे भागां विच तां सत जन्मां तक पुत्र लिखिया ही कोई नहीं। सत संगत बोलो श्री। बड़ी उदास बेचारी वापस तुर पई, जा रही ते रस्ते विच भाई गुरदास जी मिल गए, अखां विच आंसू सुलखणी दे। भाई गुरदास जी कहन लगे की गल है बीबी, आ गुरु नानक दे दर ते तां जेड़ा रोंदा होया आउंदा ओ भी हसदा जाउंदा, ते तू क्यों रो रही है? आख्या एक दात पुत्र दी मंगण आई सा, लेकिन अज गुरु नानक दे दर तो भी जवाब हो गया। भाई गुरदास जी कहन लगे साहब जी ने की आख्या? आख्या साहब जी क्यों देन तेरे भागां विच पुत्र है ही कोई नहीं। ता भाई गुरदास जी कहन लगे ता तू बेनती करनी सी जे उत्थे भागां विच नहीं लिखिया ते हुण लिख दियो। सत संगत बोलो श्री। उत्थे भी लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी देण वाला तू ही है। बीबी सुलखणी जुगत दसी भाई गुरदास ने। भाई गुरदास जी कहन लगे जदों कल साहब जी जाऊंगे ना बाहर घोड़े ते सवार होके, ता फिर तू रस्ते विच बेनती करी। आज बीबी सुलखणी रस्ते ते आके खड़ो हो गई क्योंकि पता सी कि आज इस रस्तियों मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी ने लंघना है। आके रस्ते ते खड़ो गई, जदों साहब जी आए घोड़े ते चढ़े ते बीबी सुलखणी ने चरण पकड़ ले। ओ गरीब निवाज कृपा करो, नाम मेरा सुलखणी, मैं वसदी हां चौबे, अर्ज करेनी हां गुरु हर गोबिंद अगे, अफल जांदी नू कोई फल लगे। सात संगत बोलो श्री। बेनती कर दी हां एक पुत्र दी दात। साहब जी कहन लगे तेनू कल जो किया सी तेरे भागां विच नहीं। आख्या फिर गरीब निवाज उत्थे भी भाग लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी भाग बनाउण वाला तू ही है ना, जे उत्थे नहीं लिखिया ते हुण लिख दे। ऐसी जदों प्यार दी बेनती कीती साहब जी बड़े प्रसन्न होए, आख्या चंगा सुलखणीए तेनू पुत्र बख्शिया। बीबी सुलखणी हाथ जोड़ के कहन लगी मेनू बहुतिया ने किया तेरे घर पुत्र होएगा लेकिन अज तक होया कोई नहीं, हुण मेनू कहते इतवार नहीं, मेनू लिख के दे के जाओ। साहब जी कहन लगे अच्छा फिर कागज कलम लिया लिख दईए। होर तां कुछ ना मिलिया सुलखणी नू, सामने एक ठीकरी पई सी कड़े दी,
ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵਿਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੇਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਏਕਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਇੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर किरपा बख्श, तुसी करो किरपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर किरपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनु अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा। आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन की कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल देंदे हुए कह

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालक अगे किस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने है। दिन चढ़दे उठ के कमां कारण तुर पैने है। ते परमात्मा दा नाम कदों जपांगे, रात जो सोवे दिन करे काम एक खिन लेना हर को नाम। एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा तेरे अंदर गुण केड़ा हुए।

बिंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा दा जिक्र कीता है। कहंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

0: नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है, ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां की संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां की संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने कड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगी भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

0: मैं अंधले की एक, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगूंगे?
0: खुंडकारा लकड़ी के उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों दा?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दात दे छीने सन, कपड़े धोंदे धोंदे अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उन्नी टेके जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।

रुपया मानो के नाम जपण वालियां दे देवत, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रे साय। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ये दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नु हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीतिया। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग कर दे, नाम जप दे, परमात्मा नू याद कर दे, अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड़े होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे

बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले

परमात्मा दे चरणा कमलां विच जुड़ गए। जदों तार मिली परमात्मा दे चरणा कमलां च ते भगत नामदेव दी जो बेनती सी ओ नारायण ने सुनी, जिस तरह ही तत्काल ए अरदास सुनी ते उसे खूह दे विच्चों इक कड़क दी आवाज आई, मानो के धरती फट गई उस खूह दी ते थल्ले जो पानी सी ओ लबा लब खूह दे विच पर आया। जदों देखिया ज्ञानेश्वर जी ने और उना दे सेवका ने कि भगत नामदेव दी अरदास उस नारायण दे चरना कमलां विच कबूल होई है, ता सारे आए ज्ञान

नामदेव हुण तूं अपनी प्यास बुझा लै, तेरी नारायण ने सुन लई, आइंदा समय विच जेड़े भी इस राह तों गुजरनगे ओ अपनी प्यास तेरी अरदास दी शक्ति द्वारा बुझाया करनगे। नामदेव ने शुकराना कीता नारायण दा, पानी पीता प्यास बुझा करके।

0: लुटा फिर आंद्रा नहीं खोर शाहूकार का फेर था।
1: शाबाश शेरिया ए मार पारे जान रे
0: चौकम सरदार। अरे जबरा अरा था तो जबरा
2: मेरी बॉडी का देख रही पागल हो जाएगी। मेरी सिंगिंग से कालेज फेसिंग की ओर दीवे वालों।

झूठी हो सकती है, अरे सोलह झूठी हो सकती, सोलह सुच्चा है, हर सुच्चा है, ना बंदा।

मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेन बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेन जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है, ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा, ना मेरे कोल रूप है, ना मेरे कोल अखां ने, ना अखां विचो नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल जबान है जिहदे विचो मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हाथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, उहदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद ए जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म अधूरे करमिया।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे, मुन इंद्र महा शिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सदियां मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे से सगुना सो करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बंगेकार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आखे

फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नगर करे सो पाए आस लेसे ते मैं केवल ओ मैं शब्द जलाए बोड़ी मगतरे।

आठर तीर्थे नाव है उतरे नाई मैल जिन पाटन दरबार गुजरते भले संसार तिन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नाई किसे केरी बात सचे ना दरवाज प्रखंड मंगा जब दे ताका है दीवाने को कलमे का हम तुम्हारे दर ले लिखा पीर छुटे नान का ज्यो तेल पौड़िया पे करना क्यों करा पे ही तय धारिय देख जी तया अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो है तो चल सुन सब कोई आई वारी है जिसके लिए प्राण